कर रहे हैं। बोलना सबको पसंद है, सब बोलते हैं। कमाल यह है कि बोलने की ताकत रखते हुए आदमी चुप होना सीख ले, आदमी खामोश रहना सीख ले। जहाँ बोलना है वहाँ बोले, लेकिन अक्सर व बिस्तर मकामात पर इंसान को खामोशी नजात दे जाती है। ऐसी चीज़ों में ना पढ़ें, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में ना पढ़ें, ऐसी डिस्कशंस में ना पढ़ें जिसका फ़ायदा ही नहीं है, जिसकी बेनिफिट ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, ना हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली कोई चीज़ नहीं ला सकती। ऐसे आर्ग्यूमेंट जो मेरे वजूद में चेंज नहीं ला सकती, उस आर्ग्यूमेंट से इंसान को परहेज़ करना पड़ता है। बेवजह के आर्ग्यूमेंट से इंसान का वक्त ज़ाया होता है और इंसान को कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। यहाँ पर उलमाए कराम ने खामोशी के लिए कहा है कि ये सोना है, ये गोल्ड है, इसे आजमा कर देखो, ये तुम्हें नजात अता करेगी। इट इज़ ए साइन ऑफ विजडम। हत्ता बाज़ रिवायत में असमत विकारुल मुमिन या तदुल्लो इलल हिकमा, कि ये हमेशा खामोशी विजडम की तरफ तुम्हें ले जाएगी और तुम्हारा भरम बाकी रख लेती है। इसलिए उलमाए कराम कहते हैं हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बहस में शामिल होना ज़रूरी नहीं है और हर खबर पर तज़किरा करना ज़रूरी नहीं है। कुछ जगहों पर खामोश रहना बंदा सीख ले तो उसके नजात का ये खामोशी ज़ामिन बन जाती है। चौथी वसीयत इमाम फरमाते हैं वह इकबाल बादहिम अला बादिन वल मुज़ावरा फ़इन्न ज़ालिका क़ुर्बतन इलैया। एक दूसरों को वेलकम करना, एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे की ज़ियारत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। जब सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारती हैं गुजारते हैं, कम्युनिटी में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका ख्याल करना, उनको वेलकम करना हम सब की दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। अगर इंसान सच बोले, अमानतों को अदा करे, अगर इंसान ज़ियारत को मोमिनीन की एक फजीलत समझे, आता रहे जाता रहे, फ़ायदा क्या होगा? इन चीज़ों का फ़ायदा होगा मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में। इमाम फरमाते ये चीज़ें उनसे कह दो, मेरे चाहने वालों से, मेरे मानने वालों से, ये चीज़ें उन्हें मुझसे करीब कर देती हैं। और वतन इलैया, अगर 8-11वें इमाम से 10वें इमाम से हमें करीब होना है तो इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। कहाँ क़ुर्बत हम तलाश करते हैं, कहाँ इमाम बता रहे हैं। अगर मुझसे करीब होना चाहते हैं इन सिफ़ात को तुम्हें आजमाना पड़ेगा और इन सिफ़ात पर अमल करना पड़ेगा। वला यशगलु अनफुसहुम बितमज़गीज़ बादहिम बादा, एक दूसरे का ख्याल करना है, वेलकम करना है। इमाम फरमाते हैं अपने वक्त को एक दूसरे के मजाक उड़ाने में खर्च न करना, एक दूसरे को खींचने में खर्च न करना। ये चीज़ें मुझे, इमाम फरमाते हैं ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, ये मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि हमारा एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले का मजाक उड़ाए, हमारा एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले के आयबों को बयान करे, हमारा एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले के की दुश्मनी अपने दिल में रखे और उसे परेशान करे, उसे अजियत पहुंचाए। इमाम कहते मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। यहाँ तक इमाम फरमाते हैं वो हमारी विलायत से दूर हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उस पर अज़ाब नाज़िल करता है। कुछ चीज़ें हमें इमाम से करीब करती हैं, कुछ चीज़ें हमें इमाम से बहुत दूर कर देती हैं। इमाम से दूरी यानि जहन्नम, इमाम से दूरी यानि आग, इमाम से दूरी यानि विलायत से दूरी है। इमाम कहते हैं वो काना फिल आखिरत मिनल खासिरीन, वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। लेकिन क्या करें, अभी तक जो हमारी ज़िंदगी गुजरी है 40 साल 50 साल ज़िंदगी गुजारी, किसी को परेशान करते हुए, किसी का माल लूटते हुए, किसी को धोखा देते हुए, किसी को खींचते हुए, किसी को डराते हुए, किसी को धमकाते हुए 40 साल गुजर गए, क्या नाउम्मीद हो जाएं? इमाम फरमाते नहीं, वह अर्रिफहुम अन्नल्लाह गफरा लिमुहसिनिहिम, अब नेकियों का आगाज करो, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। इमाम ने उम्मीद जगाई लोगों के दिल में, अब तक जो हो चुका जो हो चुका, अब यहाँ से फुल स्टॉप लगाओ, एक नई ज़िंदगी नेकियों वाली ज़िंदगी का

0: पूरे दिन में एक घंटा भी सना ने कभी बैठकर कुरान नहीं पढ़ा।
1: मैं इसे झूले पर बिठा देती थी और झूला झुलाते हुए सफ़े की इब्तदाई आयत की तिलावत करती थी।
0: इसका कुरान सख्त काम नहीं है।
2: वालदैन ये तवक्को हरगिज़ न रखें कि उनके बच्चे भी इस बच्ची की तरह हो जाएं।
3: होता यह है कि बाप बच्चों को रोज़गार के मौके फराहम करता है, लेकिन मुझे बच्चों ने रोज़गार दिलाया है।
0: सना अगर 2-3 साल भी हाफिज़े से कुरान की तिलावत ना करे तब भी उसे 100% कुरान याद रहेगा।
4: आप हजरात मुआफिक हैं कि मैं इन बच्चियों के वालदैन को दावत दूं जिन्होंने इन दो फूलों की परवरिश की। जनाब मोहतरम नजरी साहब और मोहतरमा नजरी साहिबा तशरीफ लाए। माशाल्लाह माशाल्लाह।

0: सबसे पहले आप हजरात नाजरीन इकराम से दुआ सलाम कर लीजिए। बिस्मिल्लाह।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलाम पेश करता हूँ असातिज़े मोहतरम, हाजरीन, नाजरीन और इस प्रोग्राम को मैनेज करने वाले हजरात की खिदमत में। मैं अबुल फज़ल नज़री हूँ, इन दो बच्चियों का वालिद, और घर पर मेरा एक बेटा मोहम्मद वहीद भी है जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ है।
0: हाँ, तैयारी में मसरूफ़ हैं इसलिए साथ नहीं लाए। मोहतरमा आप फरमाएं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खदीजा असदी हूँ, हदीस और सना की माँ।
0: सलामत रहें। अच्छा मैं एक बात कहूँ, चूँकि मैं जानता हूँ माँ ने असली कारनामा अंजाम दिया है, अलबत्ता बाप का अपना मकाम है, लेकिन जिसने रग़बत दिलाई माँ थी और कमसिनी से ही इन्हें कुरानी फ़ज़ा में पाला पोसा। अगर माँ ना होती और कुरान के लिए इनकी इतनी ताकीद ना होती तो हमारे सामने ये दो कमसिन हाफिज़ा ना होती। मोहतरमा पहले आप इनके बारे में कुछ बताएं ताकि मैं कुछ पूछ सकूं।
2: जी, अक्सर सूरों का तर्जुमा सना अशार में पढ़ती है। चूँकि इसने कुछ अशार हिजाब के सिलसिले में पढ़े थे जो बहुत असरअंदाज रहे, ये जिस प्रोग्राम में उन्हें पढ़ती थी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे, इसलिए हमने कुरान मजीद के मानी को अशार की शक्ल में याद कराया।
0: यानी मंजूम तर्जुमा।
2: जी जी जी।
3: ये मंजूम तर्जुमा कहाँ से लिया?
0: जनाब डॉक्टर उम्मीदी मज ने तर्जुमा किया है, वही होगा।
4: जी वही है।
2: जी जी जी।
0: सबसे पहले हम इनसे इंग्लिश और फ्रेंच के बारे में पूछना चाहेंगे।
4: सूरह हम जो इन्होंने पहले तुर्की और इस्तांबुली जबान में पढ़ा उसी को अब इंग्लिश में पढ़ेंगी। सना।

0: provoke your anger or of those who are astray.
1: MashaAllah, Ameen, Ameen. MashaAllah, agar main ye manzar apni aankhon se na dekhta to yaqeen karna mushkil hota. Khushi bhi hai, hairat bhi aur ek sawal bhi ke aapne kaise ye kaam kiya. Is kamsini mein Quran Majeed ki taleem kaise di?
2: Maine yani pehle hadith ne hifz kiya. Sana ke liye maine koi khaas mehnat nahi ki. Maine dekha ke sana ko sab yaad hai. To sirf itna kiya ke hifz ko mazid pukhta karwa diya. Main ise jhoole par bitha deti thi aur jhoola jhulate hue safhe ki ibtidai ayat ki tilawat karti thi. Baaki ke pure safhe ki tilawat ye khud kar deti thi. Lekin hadith ke liye maine bahut mehnat ki hai. Shuru mein tilawat Quran ke alawa hame kuch nahi aata tha. Humne shuru kiya hadith page by page ek ek ayat hifz karti thi aur mujhe sunati thi. Yahan tak ke baghair cassette ki madad aur baghair tajweed ke. बाद में हमें दूसरे वसाइल की खबर हुई और हमने डिजिटल कुरान पेन की मदद से इस सिलसिले को आगे बढ़ाया. लेकिन सना शुरू से ही कुरान सुन रही थी. पेज बाय पेज मैं उस्ताद की तिलावत लगा देती थी और ये गौर से सुनती थी, फिर मुझे पढ़कर सुनाती थी. अलबत्ता जब हदीस हिफ्ज कर रही थी सना को उसी वक्त कुरान हिफ्ज हो गया था. मैं सिर्फ कुरानी मुसाबकों में शिरकत के लिए उसे तैयार करा रही थी.
3: अबुल खासमी साहब, मैं जनाब खासमियान साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये मानवी असर और अज खुद तौफीक यानी इस तिलावत सुनने या कुरान करीम के बाबरकत वजूद या वही तिलावत यहाँ तक के इस खस्त से भी नहीं था कि ये बच्चा हिफ्ज़ कर ले. हम बाज़ औक़ात घर में तिलावत लगाते हैं और बग़ैर खस्त के बच्चे को याद हो जाता है.
4: फिर भी 3 साल में हाफिज़ तो नहीं होता, या ये कि हाफिज़ा गैर मामूली कवि हो.
5: वाकई ये तौफीक इलाही है. मैं हत्ता फ़िक्रमंद हूँ, वाकई फ़िक्रमंद हूँ इस बात को लेकर कि ये प्रोग्राम जो नशर हो रहा है इसे देखकर बाज़ वालदैन अपने बच्चों से ऐसी उम्मीदें वाबस्ता कर लें.
6: जी मुमकिन है.
5: हमें घरों में कुरानी माहौल बनाना होगा. फालतू चीज़ों के बदले कुरान और तिलावत कुरान के लिए माहौल तैयार करना होगा और तवज्जो रहे कि ना तो मनकबत की तरह हमारे घरों में तिलावत कुरान भी नशर हो, लेकिन ये ख्याल रहे कि वालदैन ये तवक्को हरगिज़ न रखें कि उनके बच्चे भी इस बच्ची की तरह हो जाएं. अपने बच्चों का इससे मुकाबला न करें. ये वाकई एक तौफीक इलाही है, अल्लाह का ख़ास करम है. कभी कभी अल्लाह ऐसा कोई नमूना पेश करता है ताकि अपनी कुदरत का मुजाहरा करे, अपनी कुदरत.
7: जनाब कासमियान, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए वाकई इस वक्त सब कुछ बहुत ही बेहतर है. ज़रा सी उम्र में आला तालीम हासिल कर चुकी हैं, हाफिज़े कुरान हैं, हाफिज़े नहजुल बलागा हैं और इंग्लिश वगैरह भी. लेकिन मैं भी जनाबी की तरह बहुत फ़िक्रमंद हूँ कि ये बच्चे बचपना ना भूल जाएं, ये बच्चे बचपने का लुत्फ़ ना ले पाएं, खेलें कूदें ना और खुश और फ्रेश ना रहें. हम ये चाहते हैं कि कुरान से उनस लगाओ निशात और ताज़गी के साथ हो. एक बात और जिसका आगा ने भी ज़िक्र किया, मुकायसा और मुकाबला हरगिज़ हरगिज़. जो भी इस प्रोग्राम को देखे और इस कमसिनी में हिफ्ज़ के ये मनाजिर मुशाहिदा करे तो कह सकता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ और ये काम करेगा. खुलासा ये कि मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ.
5: अल्लामा हिल्ली, बहुत से लोग मुंतज़िर थे कि अल्लामा हिल्ली बालिग हों तो हम उनकी तकलीद शुरू करें. यानी वो बालिग भी नहीं थे लेकिन मुश्तहिद थे.
6: वो भी एक अलग और नादिर बात है, इस्तिस्नात में से.
3: एक दास्तान भी है कि लोग उनके घर गए, जब घर के नज़दीक पहुँचे तो एक बच्चे को देखा. उसे दरियाफ्त किया कि अल्लामा हिल्ली का घर कहाँ है. कहा फ़लाँ जगह और फलाँ. गया और लिबास तब्दील करके आ गया.
6: खेलने में लगे हुए थे.
3: जी खेल रहे थे. उन्हें ताज्जुब हुआ कि जिस मर्जा के लिए हम आए हैं अल्लामा हिल्ली वो आप हैं. कहा जी मैं ही हूँ. कहने लगे वो क्या था और ये क्या है. कहने लगे वो मेरी कमसिनी का तकाजा है और बचपने का हक, वही चीज़ जिसकी तरफ उस्ताद मोहतरम हामिद ने इशारा किया.
4: खुद इनसे ही इनके बचपन की शरारतों के बारे में पूछिए.
8: जी जैसा कि आप हजरात ने फरमाया, हमने बचपन में कुरान पढ़ने से ज़्यादा खेल कूद पर वक्त सर्फ किया. हालांकि मेरा ज़्यादातर वक्त खास करके आखिर के कुछ साल मदरसा, यूनिवर्सिटी, साथ साथ इंग्लिश सीखना, तरबियती क्लासेस और इसी तरह कुरानी प्रोग्रामों और मुसाफों में सर्फ होते थे. लेकिन मेरी वालिदा ने जो मेरा शेड्यूल बनाया था उसके मुताबिक मेरा आधा वक्त इन उमूर के लिए था जबकि आधा वक्त खेलने कूदने के लिए फ्री था. मैं अपने बड़े भाई के साथ घर में रोज़ाना फुटबॉल खेलती थी. अलबत्ता छोटी थी घर में, वो भी भाई के साथ रस्सी कूदना, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और दूसरे खेल भी, साथ साथ बचपने की दूसरी सरगर्मियाँ भी थीं. हिफ्ज़ के वक्त भी ये सूरत हाल होती थी कि मैं टीवी के सामने बैठी होती, पेंटिंग बनाती रहती या कुछ लिखती रहती और साथ साथ हिफ्ज भी करती रहती थी। रही बात सना की, तो आप उससे पूछिएगा, खुद जवाब देगी, लेकिन मैं इख्तिसार से बता दूं कि पूरे दिन में एक घंटा भी सना ने कभी बैठकर कुरान नहीं पढ़ा। एक घंटा तो बहुत दूर, 5 मिनट भी ऐसे नहीं होते कि बैठकर सिर्फ कुरान पढ़े। गुड़ियों से खेलती रहती है, टीवी पर बच्चों के प्रोग्राम देख रही है, खाना पीना है, बीच बीच में दूसरों से बात भी करती रहती है, इधर उधर देखती भी है और साथ में कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़ा सज्जादिया भी पढ़ती रहती है। अलबत्ता पढ़ने से ज़्यादा सुनती है और यही बात सबब बनती है कि वो थकती नहीं है। सुबह 7, 8 या 6 बजे से ही कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़ा सज्जादिया की तिलावत मुख्तलिफ ज़बानों में हमारे घर में गूंजती रहती है और ये सिलसिला रात 10-11 बजे तक सना के सोने के वक्त तक जारी रहता है और ये आवाज़ें सना के कानों तक पहुँचती रहती हैं। सना की सुनने की याददाश्त मजबूत है और मेरी देखने की सलाहियत ज़्यादा है, गोया हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स हैं। ये सना को इम्तियाज़ हासिल है कि वो सुनकर हिफ्ज कर लेती है और ज़रूरत नहीं होती कि वो खुद दोहराए। सना अगर 2-3 साल भी हाफिज़े से कुरान की तिलावत ना करे और सिर्फ सुनती रहे, तब भी उसे 100% कुरान याद रहेगा और एक आयत भी नहीं भूलेगी।
4: ये वाकई मौजज़ा है।
6: आप जवाब दें, क्या आप पूरे कुरान की हाफिज़ा हैं जो आपने बच्चों की ये तरबियत की?
2: जी नहीं, मैं सिर्फ 3री क्लास तक पढ़ी हूँ, इनके बाबा भी 3री तक ही पढ़े हैं, लेकिन मुझे कुरान से इश्क था। मैं जब भी कुरान पढ़ती और हदीस मुझे देखती कि मेरी पूरी तवज्जो कुरान की तरफ है, अगरचे नादान थी, लेकिन जब मैं कुरान रखती तो वो आकर कुरान उठाती और खोल कर देखती कि कुरान में क्या है जो मैं बैठ कर देखती हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ती थी, हर रात 1 या 2 सफ़े, वो भी बिना लहन और तजवीद के, लेकिन इस काम से हदीस खुद ब खुद कुरान से मानूस हो गई। सना ने कुरान हिफ्ज़ करने के लिए कोई मेहनत नहीं की, एक मिनट के लिए भी हिफ्ज़ करने के लिए नहीं बैठती। मेरे सामने इसने कभी नहजुल बलागा और सहीफ़ा सज्जादिया को भी नहीं दोहराया, सिर्फ़ कुरान मजीद को, वो भी किसी कॉम्पटिशन से पहले

0: महीने के लिए तैयारी करती है, वो भी रोजाना 30 सफ़े।
1: लेकिन मोहतरमा, मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे कहीं बयान न करें, वाकया नज़र लग सकती है। हत्ता ये राज भी जो आपने यहाँ बयान कर दिया कि दोहराती भी नहीं है, इसे ज़्यादा नशर ना करें वरना इन बच्चों को नज़र लग सकती है। वाकया ये एक मोजज़ा है।
2: हम पिछले 30 साल से ऐसे प्रोग्राम में बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन ये बच्चा वाकया नायाब और इस्तिस्ना है।
3: अलबत्ता इससे मालूम होता है कि हिफ्ज़ कुरान सख्त काम नहीं है। आप असातिज़ के बयानात की रोशनी में अर्ज़ करूँ कि हिफ्ज़ करना मुश्किल नहीं है। ये बात ठीक है कि बच्चे पर दबाव ना बनाएं, इसमें कोई शक नहीं।

0: और तौफीक इलाही शामिल हाल होती है। लेकिन साथ साथ अगर मुनज्जम शेड्यूल, हिफ्ज़ करने वाले का मुकम इरादा, मुस्तकिल मिजाजी और घर वालों की हिमायत हो तो हिफ्ज़ के मराहिल आसान हो जाते हैं।
1: नहीं नहीं मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। हामिद 12 साल से हिफ्ज कर रहे हैं लेकिन आधे पारे से आगे नहीं बढ़ सके।
2: जनाब अबुल कासमी ने सूरह हम्द को 1000 मरतबा हिफ्ज किया है। मोहतरमा नजरी साहिबा ये बताएं, हिफ्ज कुरान किस हद तक कुव्वत हाफिजे पर असरअंदाज होता है?
0: बहुत ज़्यादा।
2: यानी आप हिफ्ज से पहले और हिफ्ज के बाद अपने आप में कितनी तब्दीली महसूस करती हैं?
0: हिफ्ज से पहले का तो हकीकत यह है कि मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने 4 साल की उम्र में रुखानी शुरू की और 5 बरस की उम्र से हिफ्ज। अलबत्ता हिफ्ज के बाद की तब्दीलियों को बखूबी महसूस कर सकती हूँ। साल ब साल मेरी कुव्वत हाफिजा बढ़ रही है और उसकी वाज़ह मिसाल भी एमए का सिलेबस है। जब मैं 5वीं क्लास में थी तो मैंने ग्रेजुएशन का एंट्रेंस निकाल लिया। 5 महीने में ही ग्रेजुएशन का निसाब मुकम्मल कर लिया और कबूल भी हो गई। 6वीं क्लास में थी तो एमए का एंट्रेंस दिया। शायद आम हालात में अगर कोई कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़े सज्जादिया का हाफिज ना हो तो ऐसे मौके कम ही रोनुमा होते हैं। ये मेरी ज़िंदगी पर हिफ्ज़ कुरान का सबसे अहम असर था। जैसा कि जिक्र भी किया, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मेरा हदफ मेडिकल साइंस की तालीम हासिल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपनी तालीम में कामयाब और सरफराज रही हूँ, और ये सब एक हाफिज़ कुरान की ज़िंदगी पर हिफ्ज़ के असर को बयान करने के लिए काफ़ी है।
3: माशाल्लाह, वालिद साहब बहुत खामोश बैठे हैं।
4: जनाब नजरी, अपने घर की मईशत और रिज़्क़ और रोज़ी पर कुरान करीम की बरकतों का कितना असर महसूस किया है?
5: जनाब आप तो ख़ुद बेहतर जानते हैं, कुरान मजीद में है, मैं तो बच्चों की तरह हाफिज़ नहीं हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि नमाज को सही तरह से पढ़ सकूँ। अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम हर एक के शामिल हाल नहीं होता। हमारे घर में हमेशा तिलावत कुरान नशर होती थी, हमारे 3 बच्चे थे, लेकिन मेरा बड़ा बेटा सिर्फ 5 बार हिफ्ज़ कर सका, उससे आगे नहीं बढ़ सका। अलबत्ता हलाल रिज़्क़ का असर बहुत ज़्यादा होता है, अल्लाह का शुक्र हम जिस फील्ड में भी थे। मैं पिछले 3-4 साल से एयरफोर्स में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, ये कुरान करीम और मेरे बच्चों की कुरान से उनसियत की वजह से है। सिर्फ 3-4 साल हुए हैं कि मैं एयरफोर्स में शामिल हुआ हूँ और ये मेरे बच्चों की बरकत की वजह से है। आम हालात से बिल्कुल बरअक्स होता यह है कि बाप बच्चों को रोज़गार के मौके फराहम करता है, लेकिन मुझे बच्चों ने रोज़गार दिलाया है। मैं इसे अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अइम्मा अलैहिस्सलाम और कुरान करीम का लुत्फ़ो करम समझता हूँ। इससे पहले मैंने बहुत से काम किए, कभी फलों की दुकान पर, कभी बेकरी वगैरह में काम करता था, लेकिन मैं हमेशा एहतियात करता था। जिस वक्त बाज़ार के हमारे सब साथी डिजिटल तराजू ख़रीद रहे थे, मैं उसी पुरानी तराजू को इस्तेमाल करता था कि कोई उम्र रसीदा खातून ख़रीदार आए और डिजिटल तराजू को न समझे और ये गुमान करे कि उसके साथ धोखा हुआ है, लिहाजा मैंने तय किया कि उसी तराजू के साथ काम करूँगा। और हाँ, मैंने ग्राहक को हमेशा ही वज़न से ज़्यादा फल दिए। मैं मुतमइन था कि नेकी एक दिन किसी मकाम पर मेरे काम आएगी, और अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने मुझे ये फूल अता किए जो सबसे ज़्यादा कीमती और अज़ीम नेमतें हैं जो मुझे इस दुनिया में मिल सकती थी।
3: इस फैमिली की तमाम खसूसियात और ख़ूबियों के हमरा मैंने एक बात और महसूस की है, वो इनकी सदाकत और ईमानदारी है। यानी माँ और बाप दोनों ने कितनी ईमानदारी और सच्चाई से अपने बच्चों और ज़िंदगी के बारे में बात की, मेरे मुताबिक ये एक बहुत बड़ा असासा और सरमाया है। जनाब नजरी, अपनी दोनों बेटियों को देखकर खुशी महसूस करते हैं? दोनों बेटियों को देखकर आपको जो खुशी महसूस होती है, अपनी उस कैफियत को बयान करें।
5: मुझे सबसे ज़्यादा खुशी का एहसास उस वक्त हुआ कि जब हदीस ने हिफ्ज़ करना शुरू किया। सबसे पहले मैं ऐसी नेक बीवी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। बच्चों के लिए सारी मेहनत मेरी जौजा ने की है, मेरा सिर्फ इतना काम था कि अगर कहीं जाना हुआ तो ले जाता था, इन्हें पहुँचा देता था, इनके शेड्यूल के हिसाब से काम किया। मुझे इसलिए भी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूबाई और मुल्की सतह पर 700-800 कुरानी प्रोग्रामों, मुकाबलों और महफिलों में शिरकत की है। हमने जिस प्रोग्राम में भी शिरकत की और अगले बरस फिर उसी प्रोग्राम में गए तो कम अज़ कम 4 یا 5 نئے حافظوں کا

0: सना बेटी, मैं एक आखिरी सवाल पूछूं।
1: जी।
0: तुम्हारी ख्वाहिश और आरजू क्या है?
1: मेरी आरजू है कि इमाम जमाना जुहूर करे,
2: ठीक है।
1: और मेरी दिली आरजू है कि मैं रहबर इंकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह खामेनेई का दीदार करूं। मेरी प्यारी बहनों, जिनके आइडियल और नमूना हजरत जहरा है, उनका मगरबी दुनिया की तकलीद और पैरवी करना खता है। हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम उन ख्वातीन की पैरवी करें।

0: जो खुद हवा व हवस की असीर हैं, वो हमें कैसे आज़ादी दिला सकती हैं जो खुद असीर हो। इसलिए हमें कुरान से तमस्सुक करना चाहिए और कुरान के दामन में पना लेना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद ही हमारे निजात का जरिया है।
1: Good girl.

0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस फैमिली से मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह नजरे बस से महफूज रहें। एक बार फिर हौसला अफजाई फरमा दें।
1: अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahbihi al-muntajabin. Salawat padhe Muhammad wa alim. सबसे पहले खुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, नमाजियों को अल्लाह तबारक व तआला के तकवा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। तकवा का सादा मतलब अपने तमाम अकवाल में, आमाल में, फैसलों में इस बात का लिहाज रखना कि अल्लाह तबारक व तआला इससे राजी होगा या नाराज होगा। जो अपने मामलात में जितना ज्यादा अल्लाह का लिहाज रखता है वो उतना ज्यादा मुत्तकी है। और हम इस बात की तकरार करते रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल की कबूलियत की शर्त तकवा को

रखा है। यानी इंसान जो भी नेक अमल करता है, अगर उसकी बुनियाद तकवा पर ना हो तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करता। मिसाल के तौर पर नमाज एक बेहतरीन अमल है, इबादत है। हज, उम्रा, रोजा, ज़ियारात, ये सब अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन और पसंदीदा तरीन अमल है, लेकिन इनमें से कोई भी अमल अगर उसकी बुनियाद तकवा पर ना हो तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। और जो इन आमाल के असरात और नताएज बताए गए वो तभी हासिल होते हैं जब पहले मरहले में अमल कबूल हो जाए। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने हज करने वालों को नसीहत फरमाई कि ये जो जानवर तुम ज़िबा करते हो, कुर्बानी करते हो मीना में, हरगिज अल्लाह के पास न इनके गोश्त जाते न इन जानवरों के खून अल्लाह के पास जाते, वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह के पास तुम्हारा तकवा जाता है। क्या मतलब? यानी अगर तुम कुर्बानी कर रहे हो और कुर्बानी बज़ाहिर बहुत जबरदस्त है, बड़ा पला हुआ मोटा ताजा फरबा जानवर है, लेकिन इस हज के सफर पर आने के लिए जो माल तुमने इस्तेमाल किया है वो माल हलाल नहीं, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन जानवर भी ज़िबा करो अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। ये बहुत अहम मामला है अजीजान मोहतरम। हज करो इतना अजर है, ज़ियारात करो इतना अजर है, कब? जब कबूल हो। और अल्लाह ताला ने इस तकवा को कबूलियत का मेयार बनाकर उन तमाम लोगों के लिए रास्ते को वाज़े कर दिया जो समझते हैं कि नाजायज तरीकों से कमा कर फिर उसमें से कुछ पसंदीदा काम कर लिए जाए अल्लाह के पसंदीदा, तो वो जो खराबियां की हैं इन आमाल का सवाब उन्हें ढांप लेगा, गुनाह माफ हो जाएंगे। कब माफ होंगे? जब पहले कबूल हो। बहुत अहम है, याद रखिएगा। मैं अपने आसपास के लोगों के हुकूक दबा कर, उनके पैसे दबा कर हज पे चला जाऊं, ज़ियारतों पे चला जाऊं और ये सोचूं कि मौलाना साहब ने फरमाया है जो बंदा हज करे वो ऐसे हो जाता है जैसे गुनाहों से पाक, जैसे आज शिकम में बादर से बाहर निकला है। ये बातिल है। जब तक के कुरान के बताए हुए मेयार को इसके साथ ना रखा जाए। मौलाना साहब ने बताया है, इमाम ने फरमाया है, जो फलान इमाम की ज़ियारत करे उसके गुनाह माफ हो जाते। कब? जब कबूल हो। तवज्जो फरमा रहे। तो आमाल, नेक आमाल की कबूलियत की शर्त तकवा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह फकत सिर्फ तकवा वालों से कबूल करता है। और यहाँ पर यह भी बात जरूरी है कि वजाहत की जाए कि इस्लाम का निजाम निजाम तौहीद है। एक निजाम है, दो नहीं है कि अगर एक जगह से रद्द कर दिया जाए अमल तो कोई

कोई दूसरी जगह है कबूलियत की। मसलन अल्लाह ने तकवा की शर्त रखी है, लेकिन कोई ये समझे कि इमाम हुसैन ने तो तकवा की शर्त नहीं रखी ज़ियारत की, अल्लाह ने कबूल ना किया, मौला हुसैन कबूल कर ले, ये शिर्क है। जो अल्लाह कबूल ना करे, अल्लाह के ये बंदे कबूल नहीं करते। ये उन्होंने ही सिखाया है, अल्लाह का ये दीन उन्होंने ही बताया है। कोई कहे अल्लाह कबूल ना करे मेरे फलान अमल को, जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा कबूल कर लेंगे। तो ऐसा बंदा एक निजाम तौहीद का कायल नहीं है, वो समझता है दो जगह तीन जगह, अगर एक जगह कबूल ना हुआ तो दूसरी जगह कबूल हो जाएगा। तो तकवा कबूलियत आमाल की शर्त है। इस पहले खुतबे में मैं चंद आयात कुरान करीम की आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये आयात सूरह आल इमरान की आयत नंबर 100 से लेकर 105 तक है। ये कब नाजिल हुई? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके थे, औस और खजरज तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मदीना में रहने वाले बनी इसराइल यहूदी, इनसे इस्लाम की ताकत नहीं देखी जाती, बर्दाश्त नहीं हो रही। औस और खजरज इस्लाम कबूल करने से पहले एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन थे, आपस में जंगें लड़ चुके थे, एक दूसरे के अफराद को कत्ल कर चुके थे, दुश्मनियां थी। इस्लाम की और ईमान की बरकत से ये एक दूसरे के भाई भाई बन गए, दुश्मनियां इन्होंने भुला दी। तो यहूदियों ने एक साजिश की, आज भी कर रहे हैं, दूसरे खुतबे में अर्ज करूंगा, पहले खुतबे में सिर्फ आयात। यहूदियों ने साजिश की कि पुरानी जंगों के अशआर पढ़ के औस और खजरज के अफराद को भड़का के दोबारा लड़ाया जाए, कबायली जज्बात भड़काए जाए। तो उन्होंने ये काम करना चाहा और करीब था कि जंग शुरू हो जाती, लेकिन अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और इनको रोका और फरमाया, क्या ईमान के बाद दोबारा जाहिलियत की तरफ वापस जाना चाहते हो? तवज्जो फरमाए, औस और खजरज कलमा नहीं छोड़ रहे थे, इस्लाम नहीं छोड़ रहे थे कि वो कह रहे हो हमने बस इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जाहिलियत की तरफ वापस जाना चाहते हो। इस पर आपकी तवज्जो रहे। तो इस वाक्य के बाद ये आयत नाजिल हुई जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 100 से 105 तक आपकी खिदमत में तिलावत करूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत नंबर 100, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तुतीउ फरीकन मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। कितना वाज़े है, ऐ ईमान वालों, अगर तुम जिन्हें किताब दी गई है यानी तुमसे पहले, उनके एक गिरोह की बात मान लोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना देंगे, कुफ्र की तरफ पलटा दे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे

अल्लाह की नेमत के सबब तुम भाई भाई बन गए। और उस वक्त तुम्हारी हालत क्या थी, कहां गिरने वाले थे, वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, और तुम तो आग के गड़े के किनारे पर पहुंचे खड़े थे, गिरने वाले थे, फअनकज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने तुम्हें उसमें गिरने से बचा लिया। कذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون, इस तरह अल्लाह अपनी आयात वाज़े करके बयान करता है, لعلكم تهتدون, ताकि तुम हिदायत की तरफ आओ। ये सारी आयात किस लिए, आपस की लड़ाई को रोकने के लिए, जिन्होंने कलमा पढ़ा है अल्लाह और रसूल का उनसे खिताब हो रहा है। 104, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जरूर जो खैर की तरफ दावत दे। लफ्ज आम है, हर खैर, भलाई की तरफ दावत दे। एक गिरोह तुम्हारे अंदर मौजूद हो, लेकिन आयात का जब अगर हम सियाक देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें, तो यहां खैर से पहली मुराद क्या है कि आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना, इकट्ठे रहना है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब अल्लाह की बारगाह में आपस में लड़ने वाले मुसलमानों के सामने ये आयात अल्लाह रखेगा कि तुम कौन से ईमान के कायल थे कि अल्लाह ने जो अपना आइन तुम्हें दिया था तुम्हें परवाही कोई नहीं। आज सख्त जरूरत है उम्मत को तमाम मसालिक में से कि आग, इख्तलाफात की आग भड़काने की जगह इकट्ठे हो, खैर की दावत दे, आपस के मामलात मिल के तय करें, ना कि अमेरिका वगैरह से करवाए, उनके एजेंडे पे चलो। यहूद और नसारा के एजेंडे पर अमल करना ये है। तुम में एक जमात जरूर ऐसी बन जाए जो खैर की तरफ दावत दे। وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, और नेकी का हुक्म करे, अच्छाई का, और बुराई से रोके। यहां पे मुराद अच्छाई से पहली मुराद, वरना माना वसी है, सब अच्छाइयां शामिल है, लेकिन यहां पर आयात के सियाक को, आयात कब नाजिल हुई है उसको देखते हुए, अमर बिल मारूफ यानी मत लड़ो, आपस में इकट्ठे रहो, बुराई से रोकना यानी लड़ाई से रोकना, तफरकाबाजी से रोकना। और फिर गौर फरमाया अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और तुम जो मर्जी मेयार बना लो, याद रखना यही लोग, ये जिम्मेदारी अदा करने वाले यही लोग फलाह पाने वाले, यही लोग कामयाबी तक पहुंचने वाले, जिनको ये दर्द महसूस हो कि मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहे, ना कि एक दूसरे की लड़ाई पर खुश हो और मजे ले। और आखिरी आयत 105, बहुत गौर फरमाइएगा, ये वो आयत है जिनको उम्मत इस्लाम ने जी भर के पामाल किया है, और इन्हें पामाल करने से मजा लेते हैं और ज्यादा भड़काने से खुश होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। कुरान तो नहीं बदलेगा, अल्लाह को आइंदा के हालात का भी पता था जैसा कि माजी का भी सब कुछ जानता था। तो क्या फरमाया आले इमरान आयत नंबर 105 में, फरमाया वला तकूनु कल्लदीन तफर्रकू, ऐ मुसलमानों तुम उन लोगों की तरह मत बन जाना जिन्होंने फिरके बनाए। मुसलमानों ने फिरके बनाए या नहीं बनाए जी, बस वाज़े है कि इस आयत को छोड़ दिया, इस आयत वला तकूनु, तुम मत बन जाना, कल्लदीन तफर्रकू, वो लोग जिन्होंने गिरोह बनाए, फिरके बनाए, तफरका तफर्रकू फर्क से जुदाई,

एक दफा एक बंदा मसलन किसी एक खास फिक के मुताबिक जिसे वो ज्यादा बेहतर समझता है नमाज पढ़ रहा है, एक हाथ खोल रहा है दूसरा हाथ बांध रहा है, अपनी दलील अल्लाह के सामने रख देगा, और एक दफा इसकी बुनियाद पे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, नफरत कर रहे, इसकी इजाजत नहीं है। सब एक ही उम्मत समझे, अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे को एक ही उम्मत समझे, बेवकूफों और नफरत के पौधे लगाने वालों की बकवासात को ना सुने, अल्लाह की आयात को एजेंडा बनाए। अल्लाह की आयात हाकिम है तमाम चीजों पर, अहादीस भी आयात की तरफ पलटाई जाती है। मैं सवाल करता हूं, जब अल्लाह फरमा रहा है कि तुम उनकी तरह मत हो जाना जो फिरके बने, उसके बाद रसूलुल्लाह या आइम्मा अहले बैत कोई ऐसी बात कर सकते जिसका लाजमी नतीजा फिरका बनाना हो? कर सकते? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुरान और मेरे अहले बैत कयामत तक जुदा नहीं हो। लिहाजा अगर ऐसी कोई बात है तो वो उनके नाम पर घड़ा गया झूठ है। अल्लाह की किताब को अगर कायम किया जाए तब पता चलेगा, लेकिन अगर अल्लाह की किताब सिर्फ इसाल सवाब के लिए और हुसूल सवाब के लिए रह जाए और हिदायत का ओदा उससे छीन लिया जाए तो फिर यही नतायज निकलते, जैसा कि अल्लाह ने पिछली कौमों की यही हरकत जो उन्होंने अपनी आसमानी किताबों के साथ की बताई हुई। तुम उन लोगों की तरह मत बन जाना जिन्होंने तफरका किया, वख्तलफू और इख्तलाफात का शिकार हुए, मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, इसके बाद के जब उनके पास बय्यिनात वाज़ह अल्लाह के हुक्म आ चुके थे। वउलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और यही लोग हैं जिनके लिए अजीम अजाब है। फला कौन पाएंगे? जो खैर की दावत दे, इकट्ठा रहने की दावत दे, और अजाब किन के लिए? जो तफरके की आग को और भड़काए। अल्लाह की किताब के बताए हुए उसूलों को नजरअंदाज कर दे। और अगली में दो आयात भी पढ़ दू, कब होगा ये अजाब? यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे चमक रहे होंगे और कुछ चेहरे स्याह पड़े होंगे। फअम्मल्लज़ीन अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बादा ईमानिकुम फदूकुल अदाब बिमा कुंतुम तकफुरून, तो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा कि तुमने ईमान के बाद दोबारा कुफर कर दिया। ये वही जो आयत नंबर 100 में कहा था, अगर इनकी बात मानोगे तो मैं ईमान के बाद दोबारा कुफर की तरफ पलटा दे। अब इनका अंजाम बताया जा रहा है, जो उनके एजेंडे पर चले, तुम ईमान के बाद दोबारा तुमने कुफर कर दिया था तो चखो इस अजाब के मजे उस कुफर की वजह से जो तुमने किया। वह अम्मल्लज़ीन अबयद्दत वुजूहुहुम फफी रहमतिल्लाहिहुम फीहा खालिदून, और वो लोग के जिनके चेहरे सफेद होंगे तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तिल्का आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक, ए हबीब ये अल्लाह की आयात है जिन्हें हम बरहक आपको पढ़कर सुना रहे हैं। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिलआलमीन, और अल्लाह तो आलमीन पर कोई जुल्म का इरादा नहीं रखता। ये कुरान का एजेंडा है, इस एजेंडे के मुताबिक आज ये उम्मत कहां पे खड़ी हुई, कहां खड़ी है? दूसरे खुतबे में अर्ज करता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक व तवासौ बिस्सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي
وعلي بن محمد والحسن بن علي.